नहीं होते कि कोई एहसान किए गए हैं, क्योंकि एहसान बेगानों पे किए जाते हैं। अगर हम सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं, तो अगर परिवार में ही परिवार के लिए कुछ किया जाता है, तो वहां पर एहसान नहीं हुआ करते, वहां पर वो जिम्मेदारी होती है।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: रमन्ते इति रामः, अर्थात जो रोम रोम में कण कण में रमता है वही राम है। श्री राम ऐसे ही भारत के कण कण में विद्यमान है।

0: और राम की मर्यादा तो मात्र भारत के लिए ही नहीं, सारे संसार के लिए। श्री राम की कथा सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में भी सुनाई जाती है। जैसे कंबोडिया में राम कथा को रीमकर कहा जाता है, जिसे कंबोडियन शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। वहीं फिलीपींस में महाराधिया लावण एक महाकाव्य है, जो स्थानीय भाषा में रामायण का ही एक रूप है। इतना ही नहीं, इंडोनेशियाई रामायण को यूनेस्को तक ने मान्यता दी है, जहाँ रामायण को काकाबीन के नाम से लोग जानते हैं। और भारत की तरह ही यहाँ भी राम कथा का मंचन होता है। थाईलैंड में सम्राट को राम कहा जाता है, साथ ही राम कियेन यानी राम कथा यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसी तरह कोरिया की एक बहुत बड़ी आबादी खुद को अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना का वंशज बताती है, जिन्होंने करीब 2000 वर्ष पहले कोरिया के राजा से विवाह किया था। नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे कई देश हैं जो श्री राम के मूल्यों से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। राम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के प्राण है। भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास का आधार है। कुछ लोगों ने समय समय पर भगवान राम को काल्पनिक चरित्र बताने की, उनके अस्तित्व पर प्रश्न उठाने की भरपूर कोशिश की, परंतु वो भी जान गए हैं और मान भी गए हैं कि राम तो रग रग में बसे हैं, जग जग में बसे हैं।
1: राम राम राम बोलो जय श्री राम।
2: सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर, और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम वितस्ता गीत माला एपिसोड 9। कार्यक्रम आधारित है श्री धर्मराज देशराज जी के काव्य संग्रहों गजल का घर और नमस्ते गजल पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशित और प्रस्तुत करता भारत सोपोरी।

गीत, गजलों, कविताओं आदि का महत्व मानव जीवन में सर्वव्याप्त है। जीवन की धुरी पर इनका साथ सदैव रहता है। एक इतिहासकार अपने मन के उद्गारों को पुस्तक के रूप में उकेर कर समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज का वेदस्ता गीतमाला आधारित है उस महानुभाव की कविताओं पर, जिनसे आप पहले ही FM 90.0 MHz रेडियो वेदस्ता के माध्यम से परिचित हैं। आज हम आप सभी श्रोताओं को मिलवाएंगे बहुत ही काबिल कवि सीहोर मध्य प्रदेश से आदरणीय धर्मराज देशराज जी से, लेकिन मुलाकात होगी उनके लिखे अल्फाज से और कविताओं से। आज हम इनके काव्य संग्रह गजल का घर और नमस्ते गजल के कुछ कविताएं सुनाएंगे और आपका मनोरंजन भी करेंगे, जैसे कविताएं माहौल बनाएंगे। पास रहकर भी दूर है कैसे, बेखुदी में वो चूर है कैसे, मेरा चैन ओ करार छीना है वो भला बेकसूर है कैसे, ना मोहब्बत ना दर्द ही दिल में, फिर वो आला हुजूर है कैसे, इश्क में मेरी आंख में आंसू इसमें उनका कसूर है कैसे, उनकी आंखों को देखकर जाना मुझको इतना सुरूर है कैसे, देख मंजिल को कसमस आता है दिल मेरा बेशोर कैसे, खाक में एक दिन तो मिलना है उनको इतना गुरूर है कैसे, उनको इतना गुरूर है कैसे। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भारत सोपोरी और लेके आया हूं आज वितस्ता गीतमाला का एपिसोड 9। आइए शुरुआत करते हैं आज के कविताओं का सिलसिला। ये कुछ कविताएं हम लेंगे कविता संग्रह गजल का घर से। धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, हंसने वालों का हरदम जमाना रहा, रोने वालों का खुद को मिटाना रहा, सिलसिला जिंदगी का रुका है कहीं, इसका आना रहा उसका जाना रहा, आपके हर सितम हंसते हंसते सहे, बेमजा आपका आजमाना रहा, बात मिलने मिलाने की जब भी चली उनके होठों पे हरदम बहाना रहा, बेखुदी इश्क की इस कदर छा गई, आदमी था कभी अब दीवाना रहा, ए मेरे यार बन जा तू कासिद मेरा, उनके घर तो तेरा आना जाना रहा, गमजदा है बहुत हंस न दे हम कहीं, आपका घर यूं ही मुस्कुराना रहा, हाले दिल अपना तुझको कहूंगा धर्म, ख्वाब में आज घर उनका आना रहा। लेता हूं एक और कविता, धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, उन्हें वादा निभाने की जो आदत और हो जाती तो मेरे पांव के नीचे भी जन्नत और हो जाती, दिया है जख्म दिल पर घर जरा मरहम लगा देते, मरीज़े इश्क पर कुछ तो इनायत और हो जाती, भरे आंखों में आंसू बस जरा सा मुस्कुरा देते, कयामत से जरा पहले कयामत और हो जाती, रकीबों को बुलाया ये भला तुमने किया वरना, हमारे जिस्म से जा की बगावत और हो जाती, भला तुमने किया जो अपने नजरें फेर ली वरना, हमें आंखों से पी लेने की आदत और हो जाती, जो अपने होंठ को दांतों से थोड़ा सा दबा लेते मेरे टूटे हुए दिल से शरारत और हो जाती, धर्म रोते हुए इंसान को थोड़ा सा हंसा देते, इबादत से जरा पहले इबादत और हो जाती, इबादत से जरा पहले इबादत और हो जाती।

धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, है पता जिसको मेरा आगाज से अंजाम तक, उससे डरता इस कदर लेता नहीं हूं नाम तक। रूठकर हमसे हमारे यार ये कहकर गए, लौटकर आ जाएंगे हम जिंदगी की शाम तक। रेत को मुट्ठी में भरकर तय करें मीलों सफर, इस तरह खुशियां पहुंचती हैं यहां अवाम तक। दर्द में कितना मजा है कम न हो जाए कहीं, मैं इसी डर से नहीं हाथों में लेता जाम तक। एक दिन हर आदमी उस देश जाता है धर्म, जा नहीं सकते जहां इंसान के पैगाम तक। सुनाता हूं एक और गजल, धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, दुश्मन की तरह दोस्त सताएं तो क्या करें, ऐसे में अपने याद न आए तो क्या करें। कोशिश उन्हें बुलाने की 100 बार कर चुके, ख्वाबों में बिन बुलाए वो आए तो क्या करें। हमदर्द जिनको मान के दिल में बिठा लिया, आंसू वो हमको खून के रुलाएं तो क्या करें। हमको हमारे हाल पर जो छोड़ कर गए, रह रह के जहन में वो आए तो क्या करें। कल से उन्हें बुलाने की कोशिश करेंगे हम, पर आज ख्वाबों में ना बुलाएं तो क्या करें। वो बेवफा है आज मगर कल था बावफा, उस बेकदर को दे न दुआएं तो क्या करें। रहबर हमारे रहजन से कम नहीं धर्म, बिगड़े हुए न काम बनाएं तो क्या करें। बिगड़े हुए न काम बनाएं तो क्या करें।

आइए लेते हैं कुछ और कविताएं और गजलें। धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, हम भी कमबख्त सियाने निकले, आग से आग बुझाने निकले, हम भी नादान दीवाने निकले, जागे इंसान को जगाने निकले, यार के दिल को जब टटोला है, दफन कितने ही फसाने निकले, हाले दिल सुन के हंस दिए सारे, वो अकीदों के पुराने निकले, अपनी गलती हमें महसूस हुई, जख्म दुनिया को दिखाने निकले, उनकी नजरों ने था पीछा किया, घर से जब खाने कमाने निकले, जख्म अपने धर्म दिखाने को, हम भी अशकों में नहाने निकले, हम भी अशकों में नहाने निकले। धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, जो खुशी उनको मिली कम है बहुत, मेरे खातिर तो मेरा गम है बहुत, दर्द से जो इश्क मुझको हो गया, आंख मेरी बेसबब नम है बहुत, लाश अपनी उठाए फिरता हूं, यार कहते हैं इसमें दम है बहुत, लाख गम और फिर भी हंसता हूं, लोग कहते हैं बेशरम है बहुत, जख्म खाता हूं मुस्कुराता हूं, मुझ पे रब का मेरे करम है बहुत, ख्वाब में भी न आइए हिदायत है, क्या किया मैंने जो शर्म है बहुत, तख्त और ताज बदलने को धर्म, हाथ शायर के एक कलम है बहुत, हाथ शायर के एक कलम है बहुत।

काव्य संग्रह गजल का घर से लेते हैं कुछ और कविताएं। धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, जो हंसाते थे रुलाना आ गया है, या खुदा कैसा जमाना आ गया है। अपने होठों को चबाकर देखते हैं, आज मौसम शायराना आ गया है। फूल क्या कलियां भी अब बेजार है, अब तो कांटों का जमाना आ गया है। ख्वाब में मिलने का वादा कर रहे हो, अच्छे अच्छों को चलाना आ गया है। मिन्नतों के बाद भी हम चुप रहेंगे, हमको भी तुमको सताना आ गया है। हाले दिल मत पूछिए, हंसने लगेंगे, हमको भी आंसू छिपाना आ गया है। पल में रूठे पल में माने वो धर्म, उनको अब नखरे दिखाना आ गया है। एक और कविता में धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, जब से तुमसे हुई दोस्ती दोस्तों, मुख्तसर हो गई है जिंदगी दोस्तों। मेरे ऐबो हुनर मुझको बतलाएं, खुद से हूं आज तक अजनबी दोस्तों। एक इंसान हूं उससे ज्यादा नहीं, मुझ में भी है हजारों कमी दोस्तों। मौत के आगे किसी की चली है यहां, कितना मजबूर है आदमी दोस्तों। ख्वाब में दोगड़ी क्या निगाहें मिली, मुझ पे है अब तलक बेखुदी दोस्तों। मेरे जख्मों पे फिर ताजगी देखकर तुमको होगी यकीनन खुशी दोस्तों। गम की दौलत मुझे बख्श दी शुक्रिया, कल तलक थी बड़ी मुफलिसी दोस्तों।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। जारी है कार्यक्रम विदस्ता गीतमाला एपिसोड 9। आज हम आपको सुना रहे हैं कविताएं जिनको शब्दों से संवारा है सीहोर मध्य प्रदेश से श्री धर्मराज देशराज जी। लेते हैं कुछ और कविताएं इनके एक और काव्य संग्रह है नमस्ते गजल से। धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, रहजन है कौन, रहबर कौन है, कोई बतलाए कि बेहतर कौन है। प्यार ही जिंदा सदा रहता यहां, प्यार से बढ़कर भी ईश्वर कौन है। आदमी का हर तरफ जंगल यहां, ढूंढता हूं दिल से सुंदर कौन है। मांगने से पहले ही दे हर खुशी, सोचिए ऐसा वो दिलबर कौन है। अपनी मां को अपना रब सा मानता, मैं क्यों जानूं और भी रब कौन है। हर गली में आजकल मिलते बहुत, फर्क मुश्किल है कि शायर कौन है। उस गली में है धर्म के रात दिन, वो क्या जाने घर से बेघर कौन है। वो क्या जाने घर से बेघर कौन है। एक और कविता में धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, परेशान जिंदगानी हो गई है, मेरी चादर पुरानी हो गई है। हुई है दिल के जख्मों से मोहब्बत, किसी की यह निशानी हो गई है। नहीं इज्जत न कुछ शर्मो हया ही, जवानी अब कहानी हो गई है। हुआ है गुम ये

आखिर में लेते हैं इस कार्यक्रम में कुछ कविताएं। धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, लबों पर आह जब आई हुई थी, कलम हाथों की थर्राई हुई थी, मिला जो दिल हमें बदले में दिल के, बड़ी मुश्किल से सुनवाई हुई थी, यकीनन ख्वाब में की थी खताएं, सहर कमबख्त शर्माई हुई थी, तुम्हें देखा था छुप के बे इरादा, हमारी खूब रुसवाई हुई थी, कहा था झूठ उसने भूल जाओ, हमारी जा पर बन आई हुई थी, गमों की आग ने इतना जलाया, हमारी गुम भी परछाई हुई थी, तुम्हारे दीद ने दी जिंदगी ये तबीयत, वरना घबराई हुई थी। एक और कविता में धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, जब भी अपना दर्द छुपाना होता है, रोते रोते भी मुस्कुराना होता है, रब के हाथों डोर सभी की है यारो, वो चाहे तब आना जाना होता है, ऐसा दिन भी आता है इस जीवन में, अशकों का एहसान उठाना होता है, मांगे किसको मान मिला है दुनिया में, अपनी इज्जत आप कमाना होता है, जब से दुनिया बनी प्रीत की रीत रही, सब कुछ खोना सब कुछ पाना होता है, पत्थर दिल गर पिघला है तो दुनिया में, देना अशकों का नजराना होता है, धर्म कहा ना इंसान तो जीवन में, अपनी करनी पर शर्माना होता है, अपनी करनी पर शर्माना होता है। एक और कविता आपको सुनाता हूं, क्योंकि

जितने भी इतिहासकार या कवि है वो अपनी कलम से हमारे सामने पूरी दुनिया को रख देते हैं। तो कलम के नजरिए से एक गजल धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, कलम से हमने जो कारीगरी की मगर फनकार कहते शायरी की, मेरी सादा दिली को दाद दे कोई जो अपने दुश्मनों से दोस्ती की, मेरे कारण हुई है तीरगी गुम जलाया है लहू फिर रोशनी की, हूं अपने हौसले के दम पे जिंदा मुकाबिल गम के मैंने जिंदगी की, अगर रब सामने आए तो पूछूं बताओ गम जदा क्यों जिंदगी की, कभी आंसू कभी आहें कभी गम बुरी हालत जहां में आदमी की, सदाकत जो बुजुर्गों से मिली है, सदाकत का मतलब सच्चाई, सदाकत जो बुजुर्गों से मिली है धर्म की बस उसी ने रहबरी की, धर्म की बस उसी ने रहबरी की। ये था आज का कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 9, जो आधारित था श्री धर्मराज देशराज जी के काव्य संग्रह गजल का घर और नमस्ते गजल पर। धर्मराज जी आपका आभार ये कविता संग्रह हमें भेजने के लिए, ये हमारी ओर से एक सादर भेंट। एक नगमे के साथ आप सभी को छोड़ देता हूँ, मुझे आप दीजिए इजाजत, मिलता हूँ किसी और कार्यक्रम में। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीत माला एपिसोड 9। कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशित व प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। आज का कार्यक्रम आधारित था श्री धर्मराज देशराजी के काव्य संग्रहों गजल का घर और नमस्ते गजल पर। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: आँखों में

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदिस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। सब्जियों की खेती के लिए प्रो ट्रे व कोकोपीट तकनीक से पौध तैयार करें, मजबूत होंगी जड़ें। रोपाई से 4 से 5 दिन पहले ट्रे को धूप में रखें और सिंचाई कम करें। सब्जियों की अगेती खेती और बम्पर पैदावार के लिए स्वस्थ पौध जरूरी है। जमीन की क्यारियों में पौध तैयार करने पर बीजों का अंकुरण कम होता है, जड़ें टूटती हैं और मृदा जनित फफूंद का खतरा बना रहता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सब्जी विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा के अनुसार इस समस्या का सटीक आधुनिक समाधान प्रो ट्रे व कोकोपीट तकनीक है। बेहतर परिणामों के लिए पॉन्टिंग मिश्रण के सही अनुपात के साथ साथ कुछ मुख्य वैज्ञानिक विधियों को अपनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए रोपाई से 4 से 5 दिन पहले ट्रे को शेड से बाहर खुली धूप में रखें और सिंचाई कम करें। 25 से 35 दिनों में जब पौधे 4 से 5 पत्तियों के हो जाएं, तब शाम के समय खेत में रोपाई करें। 70% कोकोपीट 30% केचुआ खाद का उपयोग करें। प्रो ट्रे टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च के लिए 99 खांचों वाली प्लास्टिक ट्रे सर्वोत्तम रहती है। पुरानी ट्रे का दोबारा इस्तेमाल करते समय उसे फफूंदनाशी घोल या साफ पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें। पॉन्टिंग माध्यम 3 भाग अच्छी तरह धुली हुई कोकोपीट, 1 भाग वर्मिकोलाइट और 1 भाग परलाइट का मिश्रण आदर्श माना जाता है। सामान्य विकल्प के रूप में 70% कोकोपीट और 30% बारीक छनी हुई केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। खांचे के बीच में गहरा खड्डा बनाकर बीज डालें। कोकोपीट की धुलाई, कोकोपीट बिक्र को पानी में डालकर अच्छी तरह फुलाएं और 2 से 3 बार साफ पानी से धोएं। ट्रे भरना, तैयार मिश्रण को प्रो ट्रे के सभी खांचों में एक समान भरें। इसे ज्यादा जोर से ना दबाएं ताकि हवा का संचार बना रहे। रोपण, प्रत्येक खांचे के केंद्र में 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहरा खड्डा बनाकर एक एक प्रमाणित बीज डालें। बीजों को ऊपर से कोकोपीट की हल्की परत से ढक दें। हल्की सिंचाई, बुआई के तुरंत बाद बारीक फवारे, हल्की सिंचाई बुआई के तुरंत बाद बारीक फवारे या स्प्रे पंप से पानी दें ताकि बीज जगह से ना हिले। प्रबंधन व देखरेख, ट्रे को 3 से 4 दिन के लिए काली पॉलीथीन से ढकें। अंकुरण चैम्बर प्रभाव, बुवाई के बाद 4 से 5 ट्रे को एक के ऊपर एक रखकर ऊपर से काली पॉलीथीन से 3 से 4 दिन के लिए ढक दें। इससे नमी और उचित तापमान मिलने से 95% से अधिक अंकुरण एक साथ होता है। धूप और सिंचाई, अंकुर मिलने लगे तो ट्रे को अलग अलग करके नेट हाउस या पॉली हाउस में धूप में रखें। सुबह आवश्यकता अनुसार हल्का पानी दें। पोषण, बुवाई के 12 से 15 दिन बाद 2 ग्राम 19:19:19 NPK प्रति लीटर पानी में घोलकर हल्का छिड़काव करें। मॉनसून में लौकी की फसल में एंथ्रेक्नोज रोग का खतरा किसान लगातार नजर रखें। अत्यधिक रोगग्रस्त पत्तियों व सड़े फलों को तोड़कर खेत से बाहर फेंकें। मॉनसून में लौकी की फसल पर फफूंद जनित एंथ्रेक्नोज रोग का खतरा सामने आया है। ऐसे में रोग का प्रकोप बढ़ने पर किसानों की पैदावार और आय पर सीधा असर पड़ सकता है। करनाल के नीलोखेड़ी क्षेत्र के संधीर गांव और आसपास के खेतों में रोग के लक्षण मिलने के बाद उद्यान विभाग ने किसानों को फसल प्रबंधन की एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में करीब 20,474 हेक्टेयर क्षेत्र में लौकी की फसल होती है। पत्तियों पर भूरे धब्बे फल भी हो सकते हैं। प्रभावित एंथ्रेक्नोज की शुरुआती पत्तियों पर छोटे हल्के पीले
अथवा पानी से भीगे हुए भूरे धब्बों से होती है। संक्रमण बढ़ने पर ये धब्बे गहरे कत्थई या काले रंग के हो जाते हैं। प्रभावित हिस्सा सूखकर छेद जैसा दिखाई दे सकता है और गंभीर स्थिति में पत्तियां झुलसने लगती हैं। रोग बढ़ने पर बेल की टहनियों और कच्चे फलों पर भी काले धब्बे बन सकते हैं। फल में सड़न शुरू होने से उसकी गुणवत्ता खराब होती है और मंडी में कम भाव मिलने की आशंका रहती है। दिल्ली NCR में बड़े पैमाने पर सप्लाई। हरियाणा में लौकी समेत कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। दिल्ली NCR की नजदीक की मंडियों के कारण करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन किसानों के लिए महत्वपूर्ण आय का साधन है। 20,474 हेक्टेयर में लौकी फसल होती है। पिछले साल 2.86 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में दवा का छिड़काव करें। एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण के लिए थियोफिनेट मिथाइल 70% WUP का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। खेत में बारिश का पानी जमा ना होने दें। अत्यधिक रोगग्रस्त पत्तियां और सड़े हुए फलों को तोड़कर खेत से बाहर नष्ट करने की सलाह भी दी गई है ताकि संक्रमण दूसरे पौधों तक ना फैले। खेत में नमी नहीं बढ़ने दें। विभाग से संपर्क करें। कृषि विज्ञान केंद्र विशेष डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि बारिश के बाद खेतों में नमी और पत्तियों पर लंबे समय तक पानी की बूंदें बनी रहने से फफूंद जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। किसानों को नियमित रूप से पत्तियों और बेल फलों की निगरानी करने की सलाह दी गई है। लक्षण दिखने पर विभागीय सिफारिश के अनुसार उपचार करने से रोग को फैलने से रोका जा सकता है। तोरियों की बुवाई से पहले खेत तैयार करें। उन्नत बीज व खाद का रखें प्रबंध। उन्नत किस्म संगम TL15 और TH68 का करें उपयोग। तोरियों की बिजाई के लिए खेत को तैयार कर लें। तोरियों की उन्नत किस्म संगम TL15 या TH68 के बीज का प्रबंध कर लें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने किसानों को तोरियों की बिजाई की तैयारी करने की सलाह दी है। 1 एकड़ में संगम TL15 या TH68 किस्म का 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त है। सिंचित तोरियों में बिजाई के समय 26 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ डालें। असिंचित फसल में 35 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट बिजाई के समय डालें। जिंक की कमी वाली जमीन में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट दें। खड़ी फसल में कमी दिखने पर 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। सुडान घास की कटाई करें। सुडान घास व संकर हाथी घास की हरे चारे के लिए कटाई करें। वर्षा ना हो तो पानी लगाएं। प्रत्येक कटाई के बाद 22 किलोग्राम व 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से क्रमशः सुडान घास व संकर हाथी घास में दें। ज्वार व बाजरे की चारे वाली फसलों में बिजाई के 30 से 35 दिन बाद 22 किलोग्राम अथवा मकचरी में 44 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ दें। वर्षा ना हो तो पानी लगाएं। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुँचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। प्रस्तुत है कार्यक्रम किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 15। आज का शीर्षक है थायराइड। कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने और निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता RJ किरनी।

आप सुन रहे हैं किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर, आपकी जिंदगी की रवानी। आज का टॉपिक है थायराइड। थायराइड महिलाओं में 8 गुना अधिक देर रात तक जागने और स्ट्रेस से खतरा। थायराइड की समस्या हर उम्र के लोगों में बढ़ रही है। देश में लगभग 4 करोड़ लोग थायराइड डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, यानी हर 10 में से एक व्यक्ति को थायराइड संबंधी समस्याएं हैं। ये संख्या इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इनमें से बहुत से लोग लक्षणों को सामान्य थकान, वजन बढ़ना या तनाव समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में जानिए थायराइड से जुड़े कुछ सवाल और विशेषज्ञों से उनके जवाब। क्या वजन बढ़ना हमेशा थायराइड का संकेत है? नहीं, थायराइड की गड़बड़ी से मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। हालांकि थायराइड हाइपर हाइपो में वजन बढ़ने के साथ घटता भी है। यदि वजन में फर्क के साथ साथ थकान, बाल जड़ना, त्वचा में रूखापन हो तभी जांच करवाइए। क्या महिलाओं में थायराइड अधिक होता है? महिलाओं में पुरुष की तुलना में थायराइड से जुड़े विकार 8 गुना तक अधिक पाए जाते हैं। इसके पीछे हार्मोनल बदलाव जैसे मासिक धर्म, गर्भावस्था और मेनोपॉज अहम कारण है। महिलाओं में थायराइड के लक्षण: थकान, कमजोरी और सुस्ती, वजन बढ़ना या वजन घटना, पीरियड्स की समस्या, अनियमित मासिक धर्म, हल्का या भारी मासिक धर्म, शुष्क त्वचा, बालों का जड़ना, आयोडीन की कमी। थायराइड हार्मोन के उत्पाद के लिए आयोडीन आवश्यक है और आयोडीन की कमी से हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। तनावपूर्ण जीवन शैली शरीर के हार्मोनल संतुलन को बाधित कर सकती है, जिससे थायराइड की कार्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है। आयोडीन युक्त नमक से थायराइड कम होता है। आयोडीन युक्त नमक ने गाइटर जैसी बीमारियों को कम किया है, पर ये ऑटो इम्यून थायराइड से सुरक्षा नहीं देता। फिर भी आधा चम्मच सफेद आयोडीन युक्त नमक खाना फायदेमंद है। क्या थायराइड हमें मूड को प्रभावित करता है? हाँ, थायराइड हार्मोन सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करती है। खासकर महिलाओं में ये डिप्रेशन, चिंता, चिड़चिड़ापन, भूलने की बीमारी और एकाग्रता की कमी का कारण बन सकता है। आम दिखने वाले लक्षण जो थायराइड के संकेत हो सकते हैं। थायराइड का असर केवल गर्दन या गले तक सीमित नहीं, इसके गुप्त लक्षण होते हैं। डिप्रेशन, थकान, याददाश्त कमजोर, महिलाओं में अनियमित पीरियड्स, बुजुर्गों में नींद की गड़बड़ी, अचानक दिल की धड़कन में गड़बड़ी, बच्चों में धीमा विकास, पढ़ाई में प्रदर्शन गिरना। क्यों आज के दौर में शहरों में थायराइड तेजी से बढ़ रहा है? शहरी जीवन शैली में तनाव, देर रात तक जागना, जंक फूड, प्रदूषण और फिजिकल इनएक्टिविटी काफी हद तक शामिल।

एसएच जांच करवाएं। नियमित व्यायाम, नियमित व्यायाम करें और वजन को नियंत्रित रखें। योग, ध्यान या अन्य तनाव कम करने वाले तरीकों का अभ्यास करें। नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाएं। यदि थायराइड की समस्या का पता चलता है तुरंत उपचार करें। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: ದೈಚು ಗೋಜಾನ್ 90.0 ರೇಡಿಯೋ ವಿತಸ್ತಾ ಹಮ್ ಸಫರ್ ಜಿಂದಗಿ ಹೊಂದ್.
1: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी. ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी. उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए. उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है. ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं. शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है. कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है. ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है. ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे. ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है. ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं. हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है. हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है. इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने. इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने. तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला.
2: नमस्कार, आज का जो ललवाक है वो माता ललेश्वरी शिव योगिनी का बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक है. ये ललवाक पहले मैं आपको कश्मीरी में सुनाता हूँ. मकरिस मलजन सोलु मनस, मकरिस मलजन सोलु मनस अदलबम जनिस जान, सुयल जूठुम निष्पानस सोरे सुईतई बनोक्य. यानी हमारा मन हमेशा शुद्ध नहीं होता. और ये शुद्धता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इच्छाएं, इसमें आकांक्षाएं, इसमें अपेक्षाएं, इसमें वासनाएं भरी पड़ी होती हैं. और इनके कारण से हमेशा मेरा मन अशांत रहता है और ये अशांत विचार इस मन को ढक के रख देते हैं. यही मल कहलाता है और यही मल हमारे असली स्वरूप को हमसे छिपा के रखता है. जैसे जैसे हम मन का थोड़ा सा भी मल दुलाना शुरू कर देते हैं, यानी उस अवेयरनेस के प्रति हम जागरूक होना शुरू हो जाते हैं, तो भीतर से आत्मा का जो प्रकाश है वो झलकने लगता है. और निरंतर साधना और ईश्वर की कृपा से ये शुद्धि बढ़ती जाती है. यानी ऐसा नहीं कि एक बार, ये निरंतर प्रयास करते रहना है और धीरे धीरे आत्मज्ञान जागृत होने लगता है. और जैसे जैसे आत्मज्ञान जागृत होने लगता है वो जो अहंकार है, जो मैं है, वो मैं मिटना शुरू हो जाता है. तब हमें अनुभव होता है कि जो मैं वाला मैं हूं वो कुछ भी नहीं और जो वो वाला मैं है अहम,

वो जो शिव का अहम है वही सब कुछ है, यही शिव को जानने की एक प्रक्रिया है। आइए मैं नीरजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी सरस्वती के मुखमंडल से इस वाह को हमारे सामने प्रस्तुत करें।

चलते चलते तुम्हारी दुआओं का असर देखेंगे और सरी रहा अपने इंतजार को महफूज रखेंगे अपने महबूब के लिए, उस महबूब के लिए जो हरदम मेरे साथ मेरे पास रहता है मेरे साए की तरह। तुम्हारे कुछ ख्वाबों ने एक मुद्दत के बाद दिल में क्यों आज आस जगाई है कि तुम्हारी सांसें तुम्हारी धड़कने मेरे आने वाले कल का नसीब है। हमारे हाथ भी उठते हैं अब तुम्हारी दुआओं में जब मेरे कारवां में तुम्हारा साया मेरे साए के हमराह इस रेतीले सफर में मील के पत्थर की तरह रह गुजर में शामिल तो होता है पर रूबरू नहीं होता।

उदासी भरे इन पीले पत्तों के मौसम में सिर्फ तुम्हारी यादें साए की तरह मेरे साथ साथ ही मेरे पास पास ही। परछाइयों के इस सफर में हमारे रास्ते पथरीले हैं, पर तुम्हारे हैं उम्मीदों से भरे। तुम्हारे लिए फिर सुबह होगी और हमारे नसीब में है हिजर की ढलती शामी। इन रेतीली हवाओं का रुख क्यों नहीं कोई मोड़ लेता है? क्यों नहीं कोई मुझे अपने दामन में पनाह देता है? मेरी चाहतों को हमेशा ये कौन दर्द का लिबास पहनाता है? क्यों कोई मुझे राहे रुस्वा छोड़कर यूं ही चला जाता है ये कहकर कि मैं लौट कर तुम्हारे ही पास आऊंगी जीने के लिए? ये मेरा ही कसूर था जो उदासी भरे इन पीले पत्तों के मौसम में मैंने तुम्हें चाहा है अपनी चाहतों की तरह। तुम्हारे आसमां में अपनी परवाज लिए बुलंदियों को छूने की आरजू की, तुम्हारे हाथों की लकीरों में अपना मुकद्दर तलाशना चाहा, ये सोचकर कि मेरे आंसुओं से शायद कभी भीगेगा तेरा प्यार।

कुछ तो है जो बेवजह तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरे मासूम ख्यालों को तन्हा कर जाते हो, और मैं तुम्हें सोचता रहता हूं देर तक कि तुम मुझे अपने आंचल में जो छिपाते, तो शायद मैं खुदा से जीने की आरजू करता, गुजारिश करता, मेरे एहसास को तुम संभालते, मेरी धड़कनों में मेरे साथ शामिल हो जाते, मेरे अधूरे सफर में मेरे हम सफर बन जाते, मेरी वीरानियों को तुम आबाद करते, मेरी राहों को तुम मुनव्वर करते, अपने सितम अपनी परेशानी मुझे दे देते, मगर ये हो न सका क्योंकि तुम्हें जाना था दूर किसी और की दुनिया में, जहां शायद उजाले तुम्हारी राहों को रोशन करने के लिए मुंतजर हैं, जहां पिंजरों में कैद परिंदे तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं अपनी आजादी के लिए, जहां ये बेजुबान पत्थर कुछ बोलने की फिराक में है, जहां ये अपनी खामोशी तोड़ने के लिए तरस रहे हैं, बेचैन हैं, मगर अब मुझे खुद को संभालने के लिए किसके हाथ उठेंगे मेरी दुआओं के लिए।

दोस्तों, फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय कर रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। ये सफर जारी है। जब रिश्ते टूट गए तो फिर कल्पना क्यों करें, क्यों तुम्हारे बारे में सोचे। क्यों तुम्हारे दिए हुए तोहफे संभाल कर रखें, फिर क्यों ना हम तुम्हारे लिखे हुए खत जलाएं, तुम्हारी दी हुई निशानियां इन पानियों में बहा दें, तुम्हारे घर तक जा रहे इन रास्तों को भूल जाने की कोशिश करें। जब ये रिश्ते टूट गए तो फिर हम क्यों उजालों का इंतजार करें। क्यों न गुप अंधेरों में गुम हो जाए, तन्हा चले चले बचपन के आगोश में, मिट्टी के खिलौनों से टूटी दीवारों को सजाएं, रंग बदलती दुनिया की तस्वीरों को आखिरी बार। आखिरी बार अपने कैनवास पर उतारने की कोशिश करें। शायद इस बार मैं एक पायदार तस्वीर बनाने में सफल हो जाऊं।

यही वो जगह है जहां हम मिले थे कभी। सब कुछ अपनी जगह बरकरार है, कायम है। हाँ, ये चिनार तब बहुत छोटा था, पर अब इसकी शाखाएं आसमां से बातें करने लगी हैं। इसकी नर्म नाजुक परछाई में बिछे मखमली घास पर करवटें लेने को दिल कर रहा है, क्योंकि ये जगह आज भी वैसी ही है जैसे पहले कभी हुआ करती थी, जहां सुनहरी शामों से पहले आफताब का मंजर हमारी सांसों को ताजगी बख्शता रहा। ये हवाएं हमारी रूहों को अमन सुकून से नवाजती रहीं। ये पानी अमृत से कम नहीं। यहां इन परिंदों की मीठी मीठी बोली सरगम की तान छेड़ती थी, और हर कोई अपनी आवाज इनकी बोली से मिलाया करता था, ताकि यहां का माहौल संगीतमय हो। बदला अगर है कुछ तो वो है सिर्फ हमारा अतीत, हमारा बचपन, जो शायद कभी भी लौट कर नहीं आ सकता।

आज के लिए बस इतना ही। ये सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

0: पेश है कार्यक्रम आपसे हैं हम, प्रस्तुत करेंगे आरजे शेरी, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कुमार, निर्देशन भारत सुपोरी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आरजे शेरी, लेके आया हूं एक नया कार्यक्रम आपसे हैं हम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमारे श्रोताओं के अपने अपनों को समर्पित गाने और शायरी सुनाएंगे। सब कुछ आसान हो सकता है ऐसा लगता है, कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। चाहे सब खो जाएं, उनको मत खोना, जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे, वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। आइए सुनाता हूं ये गीत सुरीली अखियों वाले, जो अंबाला सिटी से विकास जी ने अपनी वाइफ सुमन को डेडिकेट किया है।

वक्त कब गुजर जाता है तुम्हारे साथ चलते चलते, सूरज कब पिघल जाता है तुम्हारे साथ चलते चलते, दिल क्या क्या सोचता है तुम्हारे साथ चलते चलते, कुछ कह नहीं पाता है तुम्हारे साथ चलते चलते, जिंदगी एक सफर सुहाना तुम्हारे साथ चलते चलते, बस यूं ही प्यार से कटता रहे तुम्हारे साथ चलते चलते। ये गाना मैं अपनी वाइफ पूजा को डेडिकेट कर रहा हूं, जिसके बोल हैं,

आपने ट्यून इन किया है अंबाला कैंट का कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz। मैं हूं आरजे शैरी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपसे हैं हम। तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूं। कभी मुझसे भी कोई झूठ बोले मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूं। ये गीत राजपुरा पंजाब से शशि सहगल जी ने अपने हस्बैंड रमेश सहगल को डेडिकेट किया है। गीत के बोल हैं, वादा रहा सनम, होंगे जुदा ना हों।

हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी निखर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही है गुजर जाएगा। ये गीत आशीष गुप्ता जी ने सोलन हिमाचल प्रदेश से जिसे वो चाहते हैं उन्हें डेडिकेट किया है। गीत के बोल हैं, तुम ही देखो ना ये क्या हो गया।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ, दीजिए इजाजत। और अगर आप भी अपने अपनों को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7056413010, या हमें मेल करें radiovithasta90fm@gmail.com, ताकि अगले अंक में आपके नाम को हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपसे है हम, प्रस्तुत किया आरजे शैरी ने, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कुमार, निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।
2: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 7। इसमें हम आपको पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनाते हैं। इस कार्यक्रम को पेश करेंगे आरजे किरणी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन दिया भारत सोपोरी ने।
4: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। दोस्तों, शब्दों से भरी दुनिया में कुछ आवाजें दिलों को छू जाती है और कुछ सुरों का जादू हमें यादों के सफर पर ले जाता है। आज का ये सफर उन्हीं सुरों के संग होगा जो कभी मुस्कान बनेंगे तो कभी आंखों में नमी लाएंगे। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणे, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और पेश कर रही हूं आज का कार्यक्रम सरगम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के गीतों का सिलसिला। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं प्रेम रोग के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, जिसके बोल लिखे हैं आमिर कजालबश ने और संगीतकार है लक्ष्मीकांत पैरे।

लीजिए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म शोर का गाना, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने और जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आपकी नजर पेश है फिल्म जुदाई से गाना, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और गाया है आशा भोसले ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, जिसको आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, और जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म है सुहाग।

लीजिए आप सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, और जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

सभी श्रोताओं के लिए अगला गाना है आनंद बख्शी का लिखा हुआ, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने, और फिल्म फर्ज का गाना है ये।

अगला नगमा है फिल्म असली नकली से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, और जिसको संगीत दिया है हसरत जयपुरी ने, और उसके बोल लिखे हैं शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सरगम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अगली पेशकश है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीतबद्ध किया हुआ गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म है सुहाग, और उसको अपनी आवाजों से सजाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

अब सुनते हैं राजेंद्र किशन का लिखा हुआ गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, जिसको संगीत दिया है शंकर जय किशन ने, और फिल्म है सच्चाई।

0: दो चार दिन।
1: कार्यक्रम का अगला गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके गीतकार है साहिर लुधियानवी और संगीतकार है खयाम, और फिल्म कभी कभी से लिया गया है।

कार्यक्रम का आखिरी गाना है फिल्म अजनबी से, जिसके संगीतकार है आरडी बर्मन, गीतकार है आनंद बख्शी और आवाजें दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

इसके साथ ही सरगम का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं radiovitasta@gmail.com पर। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 7, जो पुरानी हिंदी फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम था। पेश किया आरजे किरनी ने। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। एडिट व निर्देशन दिया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: फिफ्टी, कुछ तेरे दिल में फिफ्टी, कुछ मेरे दिल में फिफ्टी, जमाना है पूरा।
1: नब्बे अशारिया सिफर एफएम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत। हम सुन रहे हैं 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी। अंबाला के शब्दों में बात करते हैं नाम और नींव। अंबाला कहां से आया? सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से? इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ। ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहे।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी ओर भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाई, भारत

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

देश है अपना देश है अपना देश है अपना देश है आज से दब रहे थे लाज से अपना देश है आज से दब रहे थे लाज से दूसरों के राज से उनके तख्त ताज से उनके तख्त ताज से कट गया।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। आलू व मटर की अगेती फसल के लिए अभी तैयार करें खेत। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करें बिजाई। बिजाई से पहले बीजो उपचार करें, जमाव अच्छा होगा। सितंबर के अंतिम सप्ताह में आलू और हरी मटर की अगेती बिजाई के लिए खेत तैयार कर लेना चाहिए। इस दौरान दिन का तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिजाई शुरू कर दें। हरियाणा में आलू की खेती मुख्य रूप से उत्तर और मध्य हरियाणा के जिलों में होती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सब्जी विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा के अनुसार, सही समय पर वैज्ञानिक तकनीक और उन्नत बीजों का चयन कर किसान सामान्य फसल से 20 से 25 दिन पहले पैदावार ले सकते हैं। मंडियों में शुरुआत में पहुंचने वाली उपज का भाव सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ऊंचा मिलता है, जिससे किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा होता है। खेत की तैयारी और भूमि उपचार। बलुई दोमट मिट्टी अगेती आलू और मटर दोनों के लिए सबसे अच्छी होती है। खेत की 2 से 3 बार जुताई करके पाटा लगाएं। अंतिम जुताई के समय प्रति एकड़ 8 से 10 टन गोबर की खाद में 2 किलोग्राम ड्राइकोडर्मा विरडी मिलाकर मिट्टी में बिखेरें। इससे उकठा और जड़ गलने जैसी फफूंद जनित बीमारियां पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। अगेता आलू 70 से 80 दिन में तैयार। उन्नत किस्में कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्य और कुफरी खेयाती, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी मोहन, कुफरी पुष्कर अगेती फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। ये किस्में 70 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। बीज चयन और उपचार। केवल 30 से 40 ग्राम वाले अंकुरित कंधों का ही चयन करें। बिजाई से पूर्व कंधों को 2 ग्राम मैंकोजेब या कार्बनडाइजिम प्रति लीटर पानी के घोल में 10 मिनट तक डुबोकर छाया में सुखाएं। मेड और कतार की आपसी दूरी। आलू को हमेशा मेड पर लगाएं। मेड की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और कंद की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। कंद को 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में दबाएं। अगेती मटर 35 से 40 किलोग्राम बीज डालें। उन्नत किस्में पूसा प्रगति, काशी मुक्ति, आजाद P3 और GS10 प्रमुख किस्में हैं, जो 60 से 65 दिन में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। बीजोपचार प्रति एकड़ 35 से 40 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। पहले TM या कैप्टन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचार करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर का लेप लगाएं। इससे पौधों में नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता 20% तक बढ़ती है। बिजाई का तरीका, मटर को 30 सेंटीमीटर की कतारों में बोएं और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखें। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना दबाएं। ये सावधानियां बरतें। आलू की बिजाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। डोरियों का 1/3 भाग पानी में डूबा होना चाहिए। खेत में पानी जमा ना हो, जल भराव से बीज गलने का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। हरी मटर की बिजाई हमेशा जब जमीन में उचित मात्रा में नमी हो तब करनी चाहिए। उसके पश्चात पौधों पर हरी मटर के फूल और फल लगने की अवस्थाओं में पहली सिंचाई करनी चाहिए। गन्ने की फसल के साथ गोभी, धनिया और मेथी की बिजाई करें, बढ़ेगा मुनाफा। मध्य सितंबर के बाद शरदकालीन बिजाई का सही समय। गन्ने की शरदकालीन बिजाई के लिए मध्य सितंबर के बाद का समय सही है। गन्ने की बुआई पंक्तियों से पंक्ति के बीच 90 से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर उपयुक्त अंतर फसलों जैसे लहसुन, फूलगोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, धनिया, मेथी, अन्य सब्जियों के साथ बैंड पर की जा सकती है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. कंबोज ने कहा कि
जिन किसानों ने गन्ने के साथ अंतर फसलें लगानी है, कम अवधि खड़ी और गैर फैलने वाली किस्मों को लगाना, दोनों फसलों की अनुशंसित खुराक को लागू करना, खरपतवार नियंत्रण के लिए दोनों फसलों के लिए सुरक्षित शाकनाशी का चयन करें, गन्ने का बेहतर अंकुरण सुनिश्चित करने के लिए बेड पर अंतर फसलों की बुआई के 5 से 7 दिन बाद खड्डों में हल्की सिंचाई करें। सोका रोग प्रबंधन के लिए फसल चक्र अपनाएं। HAU के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर महासिंह ने बताया कि सोका रोग के प्रबंधन के लिए 3 साल का फसल चक्र अपनाएं व स्वस्थ बीज का प्रयोग करें। तराई भेदक, जड़ भेदक व चोटी भेदक का जैविक नियंत्रण बहुत प्रभावी है। 1 एकड़ के लिए 1 ट्राइकोगार्ड प्रयोग करें, जिसे 24 टुकड़ों में काटकर खेत में छोटी छोटी दूरी पर अगोलों में डांके। अष्टपदी रेड माइट से बचने के लिए 600 मिलीलीटर रोगोर 30 ईसी को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। फसल से खरपतवार हटाएं। बारिश के बाद यूरिया डालें। गन्ने की फसल को खरपतवार मुक्त रखें। पछेती बिजाई में गन्ने को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी ठीक से चढ़ाएं और सितंबर तक दूसरी बंधाई अवश्य कर लें। बारिश हो तो जल निकासी के बाद 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से 2.5% यूरिया का छिड़काव करें। लाल सड़न रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़ दें। CO0-238 किस्म लाल सड़न रोग के प्रति अति संवेदनशील है। इस बीमारी से ग्रसित पौधों को उखाड़ करके खेत से बाहर नष्ट कर दें व लाल सड़न रोग से ग्रसित खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाने दें। पोका बोइंग रोग से पत्तियां पड़ जाती हैं पीली। पोका बोइंग रोग में पत्तियां हल्की पीली पड़ जाती हैं एवं उसमें धारियां बन जाती हैं और बाद में पत्तियां सिकुड़ व मुड़ जाती हैं। खेतों में पोका बोइंग रोग के लक्षण नजर आने पर कार्बेंडाइजिम 0.2% या प्रोपिकोनाजोल 0.1% की दर से स्प्रे करें। इसके अलावा गन्ने में सम्मट रोग के लक्षण, जिसमें चाबुक समान संरचना बन जाती है, दिखाई देने पर काटकर नष्ट कर दें, अन्यथा इसमें उपस्थित जीवाणु उड़कर अन्य पौधों को भी संक्रमित कर देंगे। इलेक्ट्रीशियन की नौकरी छोड़कर अपनाई जैविक खेती। 3.5 एकड़ में 6 फसलें उगा रहे 32 गांव में किसानों को जागरूक किया। बिना रासायनिक खाद धान, गेहूं, सरसों, चना, बाजरा व सब्जी लगाई। कभी दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 1500 रुपए महीना वेतन पर इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करने वाले बंसीलाल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चिड़ी गांव निवासी बंसीलाल ने नौकरी छोड़कर खेती करने की ठानी। अब वह 3.5 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। बंसीलाल ने जैविक खेती के लिए 2013 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जाकर 15 दिन की ट्रेनिंग भी ली। इसके बाद उन्होंने अपनी जमीन पर रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया। शुरुआती दिनों में लोगों ने उनके इस फैसले पर सवाल उठाए। बंसीलाल के पक्के इरादे रंग लाए। वह अपनी 3.5 एकड़ जमीन में बिना किसी केमिकल के धान, गेहूं, सरसों, चना, बाजरा और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं। बंसीलाल बताते हैं कि लोगों को जहर युक्त भोजन से बचाना ही जीवन का असली मकसद है। उनका मानना है कि आज बढ़ती गंभीर बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारी थाली में मौजूद रासायनिक अवशेष है। जब किसान अपनी मिट्टी को बचाएगा, तभी आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। गोष्ठियों में फसल चक्र अपनाने की सलाह दी। बंसीलाल ने अन्य किसानों को भी जहर युक्त खेती के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। वह अब तक आसपास के 32 गांव में किसान गोष्ठियों का आयोजन कर चुके हैं। इन गोष्ठियों के जरिए वे किसानों को जैविक खाद तैयार करने,
फसल चक्र अपनाने और पेस्टिसाइड खेती करना सिखा रहे हैं। उनकी इस पहल से प्रभावित होकर कई स्थानीय किसान रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती का मार्ग अपना रहे हैं। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रूपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC/ST, आधार कार्ड, जमीन की फर्द, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रूपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: पति से गोद में फिर आई एक लड़की।
1: लड़की? अरे कौन थी वो लड़की?
0: मैंने जब पूछा
2: ला ला ला ला,
0: बोल तेरा नाम क्या,
2: ला ला ला ला,
0: तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धम से गई छम छम छम, मन्नू बा।

0: देख रहे एक ट्रक आ रहा
1: झूठ मत बोल आ नहीं जा रहा
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल
0: देखो बेल बॉटम गालों पे डिंपल

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

Yeah! Yeah!

हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसकी शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 MHz से रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: You are listening 90.0 FM Radio with a Star. Hum Safar Zindagi Ka.
1: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचाए।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: थी ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनते रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचाए।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: ही दालच महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम वितस्ता गीत माला एपिसोड 7, जो आधारित है सुरेश चंद्र सर्वहारा के काव्य संग्रहों पर। एडिट, रिकॉर्ड, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं वितस्ता गीत माला का नया अंक। आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम आधारित होता है काव्य संग्रहों पर। आज आप सभी को मैं ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां कविताएं आपके मन को आनंदित करेंगे, आपके मन को छू लेंगे। जहां बचपन जीवन का वो समय होता है जिसमें मिले संस्कार ही व्यक्ति के जीवन की भावी दशा और दिशा निर्धारित करते हैं, वहीं साहित्य हमारी संवेदना का विस्तार करता है। साहित्य मानव समाज की भावनात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की ही अभिव्यक्ति है। किसी भी साहित्य में युगीन स्थितियों का ही चित्रण होता है। जो मैंने कहा ये शब्द हैं एक ऐसे लेखक चिंतक के जिनके नाम अनेक काव्य संग्रह छपे हैं, जिनमें कुछ काव्य संग्रहों में उनकी लिखी कविताओं से आप सबको रूबरू कराऊंगा। ये महानुभव है श्री सुरेश चंद्र सर्वहारा, जिनका जन्म हुआ है उदयपुर राजस्थान में। आइए शुरू करते हैं आज का सफर पहली कविता से, जो सुरेश चंद्र सर्वहारा के काव्य संग्रह झड़ते पत्ते शाख से हैं। विकसित सभ्य समाज का यही मूल है मंत्र, पुरुषों के समक्ष ही नारी बने स्वतंत्र। संरक्षा का जब मिले सामाजिक विश्वास, तब नारी स्वतंत्र की बात बने कुछ खास। इतनी सदियों के बाद भी हालात क्यों है दयनीय, है नारी संदर्भ में बात यही मननीय। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, वो घर बनता है एक दिन जलता हुआ मशान। आगे बढ़ना चाहते जो नारी को छोड़, अक्सर उनसे मंजिलें लेती है मुंह मोड़। नारी ही संसार की भरसांसों में जान, जीवन को संपूर्णता करती रही प्रदान। हो नारी उत्थान के संभव सभी प्रयास, हो पाएगा राष्ट्र का सच्चा तभी विकास, हो पाएगा राष्ट्र का सच्चा तभी विकास। सुरेश चंद्र सर्वहारा मां के बारे में लिखते हैं। मां गर्मी की छांव है, मां सर्दी की धूप, नेह नीर जिसका नहीं घटता वह कूप। मां में सच्चे प्रेम का आदि मध्य अवसान, समा रहा है मां शब्द में मानवता का मान। लुटा रही संतान पर हर मां अपना प्यार, बच्चे की मुस्कान में है उसका संसार। है सदियों से एक सा मां आंचल का रूप, इसके आगे है विवश तीखी सूरज धूप। कल दर्शा कर प्रेम को आज गए सब भूल, मां की ममता का मगर खिला अभी तक फूल। मां है जीवन दायिनी तन मन का आधार, मां से जीवित विश्व में त्याग तपस्या प्यार। होता निज संतान से हर माता को प्यार, किंतु धन्य जो अन्य तक दे इसका विस्तार, किंतु धन्य जो अन्य तक दे इसका विस्तार।

लेते हैं सुरेश चंद्र सर्वहारा की अगली कविता पुस्तक। पुस्तक होती ज्ञान का शब्द रूप साकार, भूख मिटा जो मानसिक देती नए विचार, चुप रहकर भी पुस्तकें कितना देती बोल, अब तक हुए विकास के देती पन्ने खोल। पुस्तक के हर पष्ट में छुपा युगों का ज्ञान, धर्म कर्म इतिहास की इनसे ही पहचान। जिस पुस्तक में ज्ञान का भरा हुआ है सार, नौका बन बहु से हमें उतारती वह पार। होती पुस्तक देव की प्रतिमा ही जीवंत, जो बाहु को शुद्ध कर करती दुख का अंत। ना हो जिसके पास में पुस्तक रूपी नेत्र, वह अंधे सा घूमता अपने सीमित क्षेत्र। ज्ञान साधना की रही पुस्तक स्वरूप विराट, ये कल की बोई फसल आज रहे जो काट, ये कल की बोई फसल आज रहे जो काट। सुरेश चंद्र सर्वहारा लिखते हैं, भीषण गर्मी के सभी गया हृदय दुख भूल, आई वर्षा खिल गए इंद्रधनुष के फूल। वर्षा आई बह गए हम कुदरत के संग, तन मन जीवन को मिली फिर से नई उमंग। वर्षा से नदियां बहे और लहकते खेत, वर्षा जल का संचयन हो हमको अभिप्रेत। वर्षा की बूंदें पड़ी माटी हुई प्रसन्न, भर भर दोनों हाथ फिर देगी हमको अन्न। वर्षा ने आ भर दिए जीवन में नवरंग, खग मृग जन के साथ अब खुश है कीट पतंग। वर्षा आकर मेटती शुष्क दरा की प्यास, इसकी हर एक बूंद में है जीवन की आस। सचमुच कुदरत ही बड़ी वर्षा है सौगात, रूखापन जिसमें करे हरियाली से बात, रूखापन जिसमें करे हरियाली से बात।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 7, जो आधारित है सुरेश चंद्र सर्वहारा की कविताओं पर। आइए कुछ कविताएं सुनाता हूँ सुरेश चंद्र सर्वहारा के काव्य संग्रह धुंध धुआं और धूप से। वो जीवन के बारे में आगे लिखते हैं, चल रहा है जीवन अनवरत, अनजाने ही बादलों की तरह बदलता अपना रंग रूप। कभी देखता है ये सुख की हल्की सी छाया, तो कभी चलती है मीलों तक साथ इसकी दुख की चिलचिलाती धूप। जानता है ये बली बांति की मौत ही है इसका आखिरी पड़ाव, फिर भी चलता रहता है ये यही सोचकर कि पर्वतों के उस पार है कहीं सपनों का सजीला गांव। झरते रहते हैं एक एक कर खुशियों के फूल, खिलती रहती है नई नई आशा की कलियां। कैसा भी हो पथ, रुकता नहीं जीवन का रथ, बढ़ता ही रहता है ये आगे छोड़कर अतीत की तंग गलियां। लेता हूं सुरेश चंद्र सर्वहारा की अगली कविता अकेलापन। धीरे धीरे चले गए छोड़कर सब साथ मेरा, मैं अकेला जी रहा अब संग मेरे बस अंधेरा। कर गई है कैद मुझको गहरी अंधी कंदराएं, दिन चिढ़ाते रहते मुझको रात भी आकर डराए। जिंदगी में प्यार के अब स्रोत सब सूखे पड़े, लील ने अस्तित्व मेरा कोहरे भी आ अड़े। एकांत के साथ ही रहे जो शब्द वे भी मौन है, जानते अब न मुझको पूछते ये कौन है। कौन किसको छोड़ जाए कह नहीं सकते कभी, अपनी ही परछाइयों को ढूंढते हैं हम सभी। चक्रव्यूहों से सजे हैं हर कदम पर आज मेले, हूं अकेला मैं कहां लड़ रहे सब ही अकेले। हूं अकेला मैं कहां लड़ रहे सब ही अकेले।

लेता हूं इसी काव्य संग्रह से कुछ और कविताएं। अगली कविता का शीर्षक है जंगली शहर। शहरों को जंगल काटकर बनाया है, इसलिए शहरों में जंगल का गुण आया है। शहरों में कहने को कानून है, लेकिन हर ओर दहशत का ही साया है। घुस आए हैं शेर भेड़िए आदमी की आत्मा में, जिन्होंने इंसानियत को ही खाया है। शहरों में है जंगल राज, अब संबंधों का बंधन किसी को नहीं भाया है। रोशन है शहर ऊंचे ऊंचे प्रकाश स्तंभों से, पर शहरी आदमी के मन में वही जंगल का अंधेरा छाया है। भाग रहे हैं जीव जंतु शहर की ओर, जंगल में तो कहर आदमी ने ढाया है। नादान है वे, नहीं जानते कि शहरों में आज कौन किससे बच पाया है। नादान है वे, नहीं जानते कि शहरों में आज कौन किससे बच पाया है। लेता हूं अगली कविता जिसका शीर्षक है शहर में पेड़। अरे पेड़ कहां उग आए तुम, व्यर्थ ही पिछवाड़े की खाली जमीन पर। ये शहर है मेरे भाई, यहां लोगों को बातें हैं बस कंक्रीटों के घर। यहां पर बिना मतलब किसी की जड़ों को कोई अपने आंगन में बढ़ने नहीं देता। चाहे करो कितनी ही भलाई, कोई किसी को सिर आंखों पर नहीं लेता। स्वार्थ की गंदगी से अटा पड़ा है यहां का हर गली कूचा। हो जिसके पास धन बल प्रभुता, वही समझा जाता है यहां पर ऊंचा। थोड़ी और बढ़ लो फिर चलाएगा कोई न कोई आरी। लगता है शहर में आकर तुमने भी मेरी ही तरह भूल की है बारी। मैं भी आया था शहर में एक दिन, आंखों में सपनों को पाले, लेकिन मिला नहीं कोई जो टूटते आदमी की सांसों को संभाले। आज मैं खोकर सभी कुछ खंडहर सा ढह रहा हूँ। भीड़ है चारों तरफ पर मैं अकेला रह रहा हूँ। भीड़ है चारों तरफ पर मैं अकेला रह रहा हूँ।

कुछ बोले। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वितस्ता गीत माला एपिसोड 7। आज का कार्यक्रम आधारित है कवि सुरेश चंद्र सर्वहारा की कविताओं पर। यह कार्यक्रम का अंतिम भाग है। अब मैं आपको कुछ कविताएं सुनाता हूं, इनके और एक काव्य संग्रह दे बच्चों को प्यार से। सुरेश चंद्र सर्वहारा लिखते हैं, खेल रहे हैं हिल मिल बच्चे तरह तरह के खेल, भाई बहनों के जैसे ही लगता इनमें मेल। आपस में यह कभी झगड़ते दे बातों को तूल, फिर आपस में गुल मिल जाते बीते बातें भूल। ऊंच नीच का इन बच्चों को नहीं तनिक भी ज्ञान, निर्धन और धनी होने का जरा न इनको भान। वर्तमान में ये जीते हैं कल की चिंता छोड़, औरों से आगे बढ़ने की कभी न करते होड़। सचमुच में बच्चे होते हैं मन के बिल्कुल साफ, इनके साथ बुरा जो करता करते उसको माफ। अपने मन में नहीं पालते कभी किसी से बैर, ये तो अपनी ही दुनिया में करते रहते सैर। हम इन बोले बच्चों को दें अपना पूरा प्यार, समझें इनकी इच्छाओं को करें मधुर व्यवहार। भरने दें इनके बचपन को ऊंची खूब उड़ान, इंद्रधनुष के रंगों से हो इनकी भी पहचान। बचपन के ये क्षण होते हैं जीवन में अनमोल, ध्यान रहे इनमें कुटताएं कहीं न दे हम गोल। बचपन की खुशियों के पथ की हर बाधा कर दूर, बच्चों को दे हम विकास के अवसर सब भरपूर। बच्चों को दे हम विकास के अवसर सब भरपूर। अब मैं पेश करने जा रहा हूं कविता संग्रह दे बच्चों को प्यार से आखिरी कविता, जिसका शीर्षक है शिक्षक। अक्षर ज्ञान हमें देते जो वही नहीं बस होते शिक्षक, होते शिक्षक माता पिता भी जो है जीवन के अभिरक्षक। जो जीवन में राह दिखाए हैं वे सब ही शिक्षक अपने, शिक्षक वे भी जगा रहे जो बंद पलक में सोए सपने। हर घटना वो शिक्षक होती सीख हमें जो देकर जाती, ठोकर भी तो शिक्षक बनकर उचित मार्ग हमको बतलाती। अनुभव भी शिक्षक ही होते जो गलती से हमें बचाते, इनका लाभ उठाएं हम तो कटे शेष जीवन मुस्काते। जिनसे नई दिशा हो मिलती उन सबको हम शिक्षक माने, इनकी ज्ञान रोशनी में हम सच्चा पथ जीवन का जाने। शिक्षा देने वाले शिक्षक होते हैं जीवन निर्माता, बना रहे हम सबका इनसे सदा सदा श्रद्धा का नाता। बना रहे हम सबका इनसे सदा सदा श्रद्धा का नाता। ये था आज का अंक वितस्ता गीतमाला का, जो आधारित था सुरेश चंद्र सर्वहारा के काव्य संग्रहों जड़ते पत्ते शाख से, धुंध धुआं और धूप और दे बच्चों को प्यार पर। हम आदरणीय सुरेश चंद्र सर्वहारा का आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने यह काव्य संग्रह हमें भेजे। यह कार्यक्रम आपके लिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की ओर से एक भेंट। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं किसी और कार्यक्रम में। आप खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीत माला एपिसोड 7। ये कार्यक्रम आधारित था सुरेश चंद्र सर्वहारा के काव्य संग्रहों जड़ते पत्ते शाख से, धुंध धुआं और धूप और दे बच्चों को प्यार पर। कार्यक्रम को एडिट, रिकॉर्ड, निर्देशित व प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: Oh,

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी,

शायद समय की रफ्तार थम चुकी है। तुम्हारे लौटने के इंतजार का ये कैसा आलम, हवाओं की तरह आते हो चले जाते हो, इस वादे के साथ कि फिर लौट आऊंगी। हमारी सितम जरीफी देखिए, तुम्हारी आहटों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं पर छूने का तस्वुर ज़हनो दिल से कौंसों दूर। बेशक रुत बदले, मौसम बदले, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी की खुमारी हमारी चाहतों को ना बदल सके। बख्श के ख्यालों को रौनक, राहों को कर गए मुनव्वर। मेहरबानी

जाने क्यों इन उदासी भरे लम्हों में एक कसक सी उठती है दिल में कि इन खामोश पुरसकून पर जज्बाती रातों में कोई आता है जरूर और पैरों को छूकर दबे पांव निकलता है यूं ही मुस्कुराकर।

एक ऐसा सच जिसे शायद आज तक कोई न जान सका, और ये भी अपनी जगह सही है, जीवन है पानी का बुलबुला। मुट्ठी में रेत की मानंद जैसा यह जीवन कब फिसल जाए हाथों से हर कोई है बेखबर। जीवन की इस पहेली को न कोई समझा है और न कोई

जो रुक गए कदम, तो शायद बहक गए भटक गए, ये रास्ते आखिर जाते कहां है? क्या मुसाफिरों को मंजिल मिल जाती है? बेशक सफर लंबा हो, पर दौराने सफर साथी तो मिल जाना चाहिए, जो कभी पीछे छूट गए थे वो शायद लौट के नहीं आएंगे, शायद लौट के नहीं आएंगे। लेकिन नए परिंदे हमारे साथ उड़ान तो भर सकते हैं।

जब बात चली है तो आज मेरी सितारों से बात हुई। सितारे जो आसमानों में जा बसे हैं, तन्हा तन्हा खामोश वजूद लिए दबी दबी मुस्कुराहटों का जेवर पहने हुए, खुशबू का लिबास मोहब्बतों की चादर ओढ़े। सितारे जो गुप अंधेरों में तैरते हैं बादलों के साथ, रात भर पहरेदारी में मसरूफ, आसमानों की निगहबानी में मुंतजर, हर पल हमारी मुलाकातों में शामिल ये सितारे रहते ही बेपरवाह।

0: गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।
1: वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है।
2: जय श्रोता, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे ये प्रसारण पसंद आए होंगे, और अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो हम आपको कुछ क्षणों में नोट कराएंगे। हम प्रसारण करते हैं अंबाला छावनी से, और हम बात करते हैं अंबाला की, और कोशिश करते हैं कि आप सभी के मन की बात हम करें, और हम वो कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जो रखते हैं आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा, और आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:20। दोस्तों, आज के इस सुरीले सफर को अब यही विराम देने का समय आ गया है। भरोसा है कि ये प्रसारण आपकी शाम में थोड़ी खुशियां घोल गया होगा और आपके दिन को यादगार भी बनाया होगा। किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी डिग्री, पद या धन दौलत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे आपसे, जो हम हर दिन किसी खास विषय पर बात करते हैं। जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों को स्नेह देते हैं, और हर किसी के साथ विनम्रता से पेश आते हैं, तो हमने केवल दूसरों का दिल जीतते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सुंदर और सार्थक बनाते हैं। अच्छा व्यवहार एक ऐसी भाषा है जिससे बिना बोले भी समझा जा सकता है। एक मुस्कान, एक विनम्र शब्द, दूसरों की भावनाओं की कदर, ये छोटी छोटी बातें ही रिश्ता और रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में सरलता, आदर और अपनापन रखता है, वो जहां भी जाता है प्रेम और सम्मान पाता है। परिवार को एक सूत्र में बांधकर कार्य क्षेत्र हो या समाज, हर जगह अच्छे व्यवहार से ही भरोसे और स्नेह के रिश्ते बनते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है, उनकी बात धैर्य से सुनता है और हर परिस्थिति में शालीनता बनाए रखता है, वो न केवल स्वयं शांत से जीता है बल्कि अपने आसपास भी सकारात्मकता फैलाता है। सच्चा व्यक्तित्व वही है जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी विनम्रता और सहजता को बनाए रखे। दोस्तों, आइए हम सब अपने व्यवहार में ये सुंदरता बनाए रखें, अपनों के साथ प्रेम से पेश आए और हर मुलाकात को यादगार बनाएं, क्योंकि विनम्रता और अपनापन ही वो पूंजी है जो हमारे रिश्तों को हमेशा के लिए एक खूबसूरत मोड़ देता है और उन्हें खूबसूरत बना देती है। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय, और आशा करता हूं कि इस विषय से आपको कुछ खास जानकारी मिली होगी। और सकारात्मकता जहां तक सवाल है, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हर दिन अंबाला के बारे में, पॉजिटिवनेस के बारे में बात करता है, ताकि आपका दिन अच्छे से गुजरे। तो हर दिन की तरह आज के लिए भी मैं चार पंक्तियां आपके लिए लाया हूं, और आज की पंक्तियां यूं हैं। मीठा व्यवहार जीत लेता है हर किसी का दिल, मीठा व्यवहार जीत लेता है हर किसी का दिल, कड़वे बोल तोड़ देते हैं रिश्तों की हर कड़ी शामिल। वितस्ता भी तो सबके लिए एक जैसी बहती है। जी हां दोस्तों, वितस्ता भी तो सबके लिए एक जैसी बहती है, यही सिखाती है अपनापन ही जिंदगी की असली मंजिल। यही सिखाती है अपनापन ही है जिंदगी की असली मंजिल। दोस्तों, जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 27 सितंबर 2026 रविवार को हमारी सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत, और कल रविवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर हरियाणवी सेगमेंट में, हरियाणवी में आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ गांव चलें एपिसोड 3, रजापुर आपको लेके चलेंगे, पेश करेंगे नेहा दाकड़। 8 होगा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कल एपिसोड 9 आपके लिए पेश होगा सुमन कल्याणपुर पर, और 8:30 किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 16, शीर्षक होगा आप ही शिक्षक आप ही पुस्तक। 9:30 पहलू और गीत एपिसोड 10 और 10:15 पर नारी एक दर्पण एपिसोड 3, संगीत की सभा जारी रहेगी 6 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल और 7 सरगम एपिसोड 11, और 8:30 सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा, कल की कड़ी है धड़कने हैं उदास। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम भी पसंद आएंगे। अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010, नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी टीम रेडियो विदस्ता के कैजुअल अनाउंसर अनु ने तैयार की थी। तो श्रोताओं यही विराम देते हैं आज के सफर को, उम्मीद है कि यह प्रसारण आपको पसंद आया होगा और आपके दिन को थोड़ा और रोशन कर गया होगा। अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए अब आज्ञा, FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और सुनते रहे हर दिन 6:00 से 9:00 तक। कल सुबह तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।